गुरु स्वारी गुरु रूप साध संगत वाहे गुरु गुरु मंत्र है जप हो मैं खोई ये पवित्र पावन गुरु मंत्र गुरु नानक पातशाह जी ने सानू बख्शिश कीता है। यो गुरु मंत्र है जिस दे जपन नाल जन्मा जन्मा दी पापा दी मैल इस मन दे उत्तों उतर जाती है, क्योंकि सतगुरु जी सानू दसदे ने इस मन को जन्म जन्म की मर लागी काला हुआ स्याह हो, जिदा स्याही हुंदी काली ना। सतगुरु जी कहिंदे ने मन इहो जिहा बणिया पिया है, इसे करके संसार दे विच इह विकार भोगदा है। विचार माड़े ने परत दर परत इस मन दे उपर पापां दी मैल चढ़दी रहिंदी है। वाहिगुरु दा सिमरन इस करके है, वाहिगुरु नूं सुनाउण वास्ते नहीं। सतगुरु जी कहिंदे ने सिमर सिमर गुर सतगुर अपना, सोया मन जागावै, सुते हुए मन नूं जगाउण वास्ते है। आवाज देनी है, उठ उठ भाई जाग। इस करके सिमरन करना है कि सुता होया मन जाग जावे। जदों मन सुता होया जागेगा ते उस वक्त इसका पार उतारा हो जाएगा। सो गुरु प्यारी साध संगत आओ पवित्र पावन शब्द सरण करिए। मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा, मनसा का दाता सब सुख निदान, अमृत सर सद ही भरपूरा।

अंत लय छड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न हुई। तू करता करना मैं नाही जा हौ करी न हुई। बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाई लखिया रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया।

हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक।

शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक सम

तिस पाछै बचरे छरिया, तिन कवन खलावै कवन चुगावै, मन मह सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सत।

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतोह जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा।

पढ़ै बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरखे अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ा वरना कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुदे आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करहै सो होई, तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी। जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा।

रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनु कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आप विचो।

मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाउ। जप तप संज

रखहु शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कहु नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबू, आप हाथ दै मुहे बचावो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै

ठाकुर भजन की रह प्यासा। तुम्हें चाड़ कोई अवर न त्याहूं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उवरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्चा, श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा। राख लिहो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन का

तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदंतिक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार किस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निरपकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताका कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कह कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट पयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचम पाव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं पाव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखो बार सिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुझ तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहरे हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद्ध सिद्ध कर्मू सब होई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई।

दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहु उबारी। सर्व ठौर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लेहु बचाई। सुवैया

पुराण अनेक कहे मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहूँ, सब तुहे बखान्यो। दोहरा सग

गुर ते जानी सुन ते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां।

जना कै संग भव जल तारियन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहिब की टेक नानक मने माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे।

नमः। सतगुरे नमः। श्री गुरुदेवय नमः। अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों, कल कलेश तन माहे मिटावों। सिमरों जास विसंबरे कै, नाम जपता गंत अनेकै। वेद प्राण सिमरत सुदाक्यर, कीने राम नाम इक आख्यर। किनका एक जिस जी बसावै, काकी महिमा गनी न आवै। काकी एकै दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उदारु। सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न ब्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ कै सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन से दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जिने आप सिमराए, नानक ता कैला को पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद्ध माही समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ कौ सिमरह से तनवंते, प्रभ कौ सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ कौ सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ कौ सिमरह से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सुधा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरह तिन अनंद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसै हरनेरे। संत कृपा ते अन दिन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग। प्रभ कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभ कै सिमरन कबहु ना चूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी। प्रभ कै सिमरन निचले आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार। सिमरह से जन जिनको प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन क्यो सगल आकारा, हर सिमरन मह आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, घट घट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभसात। अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल हुवै अत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै।
ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ। ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸ਼ਤਰੈ। ਅਨਿਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਕ ਨ ਬੁਝਾਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਆਘਾਵੈ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਜਾਤੇ ਕੇਲਾ, ਤੈ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਐ। ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ। ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਜੈ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ। ਅਨਿਕ ਜੋ ਨਿਜਨ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਮ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ। ਹਉ ਮੈਲਾ ਮਲ ਕਬੂ ਨ ਧੋਵੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ। ਸਾ ਨਾਮ ਜਪੂ ਮਨ ਰੰਗ, ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ। ਜਿਹ ਮਾਰ ਕੇ ਗਣੇ ਜਾਹੇ ਨ ਕੋਸਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮੂਹਾ ਸੰਗ ਤੋਸਾ। ਜਿਹ ਪੈਡੈ ਮਾਂਦ ਗੁਬਾਰਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ। ਜਹਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨ ਸੁਝਾਨੂ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੈ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ, ਤੈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਛਾਮ। ਜਹਾ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆਕਰਖੈ, ਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਖੈ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ। ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ। ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬਿਰਤ ਬਵੇਕੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੈ ਨ ਭੰਗ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ, ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਉ ਭੋਗ ਜੋਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ। ਜਨ ਰਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ, ਹਰ ਧਨ ਜਨ ਕੋ ਆ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ। ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਓਤ ਪੋਤ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸਮਾਤੇ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਜਪੈ, ਹਰ ਕਾ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਛਪੈ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਬਹੁ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਸੰਕੇਤੇ ਤਰੇ।

की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लता, नाम की महिमा संत ऋतवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै, संत का संगवड भागी पाईऐ, संत की सेवा नाम ते आईऐ, नाम तुल कछवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को। श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत विख्यान, योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया, सगल त्याग बन मध्य फिरया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुण्य दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास पीसर थीवे, अगन मारे होमत पुराण, कनिकस्व है वर भूमदान, न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संज मत साधन, निमक निमक कर शरीर कटावे, तौ पीओ मैं मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाहि, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि, मन कामना तीर दे छुट्टे, गर्व गुमान न मन ते उठे, सोच करे दिन सरात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही कौ बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो वह बहु दे अनीत, शुद्ध काओ एकाची पीत, मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत सयान जम का पौ व्यापै, अनिक जतन कर त्रिसन ना त्रापै, पेक अनेक अग्नि बुझै, कोट पाव दरगह नहीं सिजै, झूठ सुनाही उपयाल, मुहि व्यापै माया जाल, अवर करतू सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जे को मांगे, साधना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम

सा जना की सरनी पर है। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान, सात संग जाका मिटे अभिमान। आपस को जो जाने नीचा, सू गणिये सब ते ऊंचा। जाका मन हुए सगल किरीना, हर हर नाम जिन कट कट चीना। मने अपने ते बुरा मिटाना, पेख सगल श्रेष्ठ साजना। सुख दुख जन सम दृष्टिता, नानक पाप पुन नहीं लेपा। निर्धन को धन तेरो नाओ, निथावे को नाओ तेरा थाओ। निमाने को प्रभ तेरु मान, सगल कटा को दे बहुदान। कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। अपनी गत मित जन हुआ पे, अपन संगा प्रभ राती। तुमरी उस्त तुम ते हुए, नानक कवर न जान सोए। सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सासंग दुर्मत मल हिरया। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जप हो जी सदा। सगल बानी में अमृत बानी, हर को जा सुन रसन बखानी। सगल थान ते उत्तम थान, नानक जी घट वसै हर नाम। श्लोक निर्गुण यार एनिया, सुप्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभही नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तो सा सुवार सिगारिया, गर्भ अग्न मह जिने उबारिया। बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, पर जोवन भोजन सुख सूद। बिरद पयाओ पर साख सैन, मुख पयाओ बैठ कौ दैन। एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श ले हो तो नानक सीजै। जे प्रसाद धारू पर सुख बसै, सुत प्रात मित बनता सिंहसै। जे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पाव कमुला। जे प्रसाद भोगै सबरसा, सगल समग्री संसात बसा। दीने हस्त पाव कर नित रसना, तिसै त्यागवर संरचना। ऐसे दोग मुड़ंद व्यापे, नानक काड लेहु प्रव्यापे। आदंत जो राखन हार, तिस्यो प्रीत न करै गवार। जाकी सेवा नवनित पावै, तास्यो मूड़ा मन नहीं लावै। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावै दरगै मानु, तिसै बिसारै मुग्ध अजानु। सदा सदै भूलन हार, नानक राखन हार अपार। रतन त्या कौडी संग रचै, सा छोड़ झूठ संग मचै। जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने। छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाय तिस पर हरै। चंदन लेप उतारै धोए, गर्द प्रीत भस्म संग होए। अंधकूप में पतत बिकराल, नानक काढ लिहु प्रभ दयाल। करतूत पशु की मान सुजात, लोक पचारा करै दिन रात। बाहर भेख अंतर मल माया, छपस नाहि कछ करै छिपाया। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापै लोभ सवाल। अंतर अगन बाहर तन स्वाहा, गल पात्र कैसे तरह अथाह। जाके अंतर बसै प्रव्याप, नानक तेजन सह समात। सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गै लेहो ओढ़ निभावै। कहाँ बुझारत बुझै डूरा, निष्कहिए तू समझै पूरा। कहा बिशन पद गावै गुंग, जतन करै ताओ पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन, नहीं हो तुआ उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सुआवै न चीत, जो बैराई तस्यो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसै, अंत केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मानै मने प्रतीत, काल नया वै मूढ़े चीत।
बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह याहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लेहु अपन कर करम तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी राज तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा महसूख अग्नेरे कोई न जाने तुमरा अंत उचेते उचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते होए सुआज्ञाकारी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी श्लोक देन हार प्रभ छोड़ कै लाग आन सुवाए नान कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अस्पदी दस वस्तु ले पाछे पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहु कह करे जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा ताकौ कीजै सद नमस्कारा जाके मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगणत साहु अपनी दे रास खात पीत बरतैन दोलास अपनी अमान कच बहुर साहु ले अज्ञानी मन रूस करे अपनी प्रतीत आप ही खूवै बहुर उसका विश्वास न हुवै जिसकी वस्ति से आज्ञा राखै प्रभु की आज्ञा मन है माथै उसते चौगन करै निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिर की छाया सो रंग लावै ओ बिन सै ओ मन पछतावै जो दिसै सो चालन हार लपट रहू तै अंध अंधार बटाऊ सो जो लावै नेहि ताको हाथ न आवै के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजोबन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अश्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पीक हस्ता मिथ्या त्रोमो अभिमान मिथ्या पशु पर कर्तुभमान अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है मिथ्या नेत्र पेकत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या दास लेत विकारा बिन बूझे मिथ्या सब पहे सफल देह नानक हर हर नाम ले बिरथी साकत की यार जा साच बिना कहू वत सूचा बिरता नाम बिना तन अंध मुकावता कै दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता बिहाए मेघ बिना ज्यों खेती जाए गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ दाम तन तन ते जन जे कट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ रहत अवर कछ अवर कमावत मन नि प्रीत मुखो गंड लावत जानन हार प्रभु प्रवीन बाहर भेख न काहू पीन अवर उपदेशय आप न करै आवत जावत जन्म मरै जिसके अंतर बसै निरंकार किसकी सीख तरै संसार जो तुम पाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पह माने अपह आप आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नीरा उपाव से आन सगल ते रहत सब कछ जाने आत्म की रहत जिस भाव तिसले लड़लाए तान तनंत रहा सुमाए सो सेवक जिस कृपा करी
निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोप मोह विनस जाए अहंगमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी जे प्रसाद छक्ति अमृत काहे तिष्ठा कुर कौ रख मन माहे जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यागुण जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतबर लुभावै जे प्रसाद सुख से सुविजय मन आठ पहर ताका जस गावीजै जे प्रसाद तु सब को मान मुक्ता को जस रसन बखानै जे प्रसाद तिरु रहता धर्मो मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्मो प्रभ ची जप दर गै मान पावै नानक पत सेती घर जावै जे प्रसाद आरो कंचन देही लिव लावो तिस राम सनेही जे प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावै हारो हर जस कहत जे प्रसाद तिर सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों वालस की जय जे प्रसाद अश्वहस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत्य सहत्याई सहत्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रख है जे प्रसाद करे पुन बहुदानु मन आठ पैर कर तिसका ध्यानु जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सासा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरह सदा अनूप जे प्रसाद तिरनी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत रहे गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद पेखै बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुसह समावै सब प्रभु त्यागवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल मनो बिसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तूता कौ जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पाव है साच रे मन मेरे तू ता सुराच जे प्रसाद सब की गत हुए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मतूतम होए सर्व निदान प्रभ तेरी मया पू कछु न किन्हू लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किनकै कछु नहात श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन बीता नानक बिनवंता साजना किए चर्ज कथा अष्टपदी साधक संग मुखो जल होत साध संग मन सगली खोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगट सुगयान साधक संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनै कौन पुरानी नानक साध की शोभा प्रभ माहि समानी साधक संग अगोचर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्लै साधक संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होय सब की रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतहु तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न
साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के स्यो नहीं बैर, साध के संग ना बिगा पैर। साध के संग ना ही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग ना ही हो ताप, साध के संग तजै सब आप। आपे जान साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध के संग ना कबहू तावै, साध के संग सदा सुख पावै। साध संग दस्त गोचर लह, साधु कै संग अजर सह। साध के संग वसै थानु चै, साधु कै संग महल पहुँचै। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम निधानु, नानक साधु कै कुर्बानु। साध के संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै। साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय कर सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप लायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्व थान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध के संग कलुकत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिचरत हर मेला। जो इच्छा सोई फल पावै, साध के संग न बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगै ब्रह्म मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा। साध संग कहे आज्ञाकारी, साध संगत भई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पिटे संजोग। साध की महिमा वेद न जानै, जीता सुनै तेता बख्यानै। साध गुपमा ते गुण ते दूर, साध गुपमा रही भरपूर। साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूछ ते मुची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखै किस बिन कोए। नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व कौ शोक। ब्रह्म ज्ञानी कै दृढ़ समान, जैसे राज रंग को लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों वसुदा को खोदै को चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ, नानक ज्यों भाव का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जला। ब्रह्म ज्ञानी कै मन हुए प्रगास, जैसे तारू पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उच्च ते उच्चा, मन अपना है सब ते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी की ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार माह। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी लेता हुत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगहिता।
ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी करे प्रव्याप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गात, ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उर धारे जो अंतर नाम, सर्व में पिखे भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको अपर सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या ना ही रसना परसु, मन में प्रीत निरंजन दर्शो, पर त्रै रूप न पिखे नेत्र, साध की टहल संसंग हेत, करन न सुने काहू की निंदा, सबते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की वासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानक कोट मदे को ऐसा परस, वैसनु सो जिसु परसु प्रसन्न, विष्णु की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए निकर्म, तिस वैसनु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तने अंतर सिमरन गोपाल, साबु पर होवत कृपाल, आप दृढ़ वृह नाम जपावे, नानको वैसनु परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसे सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, साध संग पापा मलखु वै, तिस भगवती की मातु तम हु वै, भगवंत की टहल करे नितनीत, मन तने अर्पे विष्ण परीत, हर के चरण हृदय बसावे, नान कैसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध है, राम नामा तुम मैं सोदय, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उदय जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो न आवे, वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, सुख मैं जाने स्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपे को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सा संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारै, पस प्रेत मुगद पात्र को तारै, सर्व रोका उकत नाम, कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहू जुगत किते न पाइए धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत राम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दर गए परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी परे, सगल संगात्म दास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभु की आज्ञा तमहितावे, जीवन मुख सो कहावे, तैसा हर तैसा शोक, सदानंद तै नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा मृत तैसी बिकाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर्ता ईसाई जुगत, नानको पुर कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ, आपे करण करावन जोग, प्रभाव है सोई फुन हो, पसर आप हो अंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा परगास, पार ब्रह्म करता विनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल, सलोक
उस्तुत करे अनेक जन अंत न पार अवार। नानक रचना प्रव रची बहु विधनिक प्रकार। अष्टपदी कई कोट हुए पूजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिस्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कव का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है। नानक करते कंत न पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अभेगातम निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरा, कई कोट पर दुख न करे, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित लाओ तित तित लगना। नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्व पाए, कई कोट पात्र वृक्ष निप जाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नखेतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र, सगल समग्री अपने सूतार है। नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्थान सात्विक, कई कोट वेद प्राण सिमरत शास्त्र, कई कोट की रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जके नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे शुकर मिर्गा, सब ते नेरे सबू ते दूर, नानक आप लिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर स्वर्ग निवासी, कई कोट जन्मै जीवे मरे, कई कोट भोजन नि फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत, जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय वैरागी, राम नाम संगति निवलागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मैं पार ब्रह्म नहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होय आप सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होय अवतार, कई जुगत किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट कीने बहुपात, प्रभ ते होय ब्रह्मा समात, ताकांत न जाने कोय अपे अब, नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवता तुम प्रगास, कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवे, अमर पै सरसद ही जीवे, कई कोट नाम गुण गावे, तुमरा सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ सुमारे, नानकोए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रवे कह दूसर नाही कोए, नान तिस बलिहार न जल थल मैल सोए, अष्टपदी करण करावन करण जोग जो तिस भावे सोई हो, किन मैं थापु थापन हारांत नहीं किछ पारा वारा, हुक्मे तारा तार रहा वै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे निक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहा समाई, प्रभावै मानु पत पावै, प्रभावै तां पात्र तरावै, प्रभावै बिन शास्त्र राखै, प्रभावै तां हर गुण पाखै, प्रभावै ता पचत उधार है, आप करे अपन विचार है, दुहा सिरें काप स्वामी, खिल बिकसे अंतर जामी, जो पावै सुकार करावै, नानक दृष्टि अवर नाया वै, कह मानुक ते क्या हुए आवै, जो तिस पावै सोई करावै, इसके हाथ हुए ता सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मैं रचै, जे जानत अपना बचै, भरमे भूला दै दिसतावै, निमक माए चार कुंट फिरे आवै, कर कृपा जिस अपनी भग दे, नानक तेजन ना मिले, खिन मैं नीच कीट गौराज, पार ब्रह्म गरीब निवास, जा का दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दै तिस प्रगटावै, जा को अपनी करै बख्शीस, ताका लेखन गणै जगदीश, जीव पिण सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल ना ही सहात, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावै सोई पंतियो, कबू ऊच नीच मह बसै, कबू सोग हर खरंग हसै, कबू निंद चिन्ह व्यवहार, कबू ऊब आकाश पयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिला वनहार, कबू निर्त करै बपात, कबू सोए रह दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवाल, कबू हुए बह बड़ राजा, कबू पेकारी नीच का साजा,
कबू अब कीरत में आवे कबू भला भला कहावे जो प्रभ राखे तिवहि रहे गुरु प्रसाद नानक सच कहे कबू हुए पंडित करे बख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीरथ स्नान कबू सिद्ध साधिक मुख्यान कबू कीट हस्त पतंग हुए जी यानक जुन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे तिवे निचावे ज्योत स्वभावे सोई हुए नानक दूजा वरण कोय कबू सा संगत पावे सुस्थान ते बौर नयावे अंतर हुए ज्ञान प्रगास सुस्थान का नहीं विनाश मंत्र अमृत करांग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जलिया कटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ बले अष्टपदी जिसके अंतराज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आप इसको करवंत कहावे जन मरे वो जोन फरमावे तन भूमका जो करे गुमान सो मूरखंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकिया मुक्ता गए सुख पावे धनवंता होए क्या धनवंता होए कर गर्भावे तिन समान का संग न जावे बोलस कर मानुक ऊपर करे आस पल भीतरता का हुए बिना सब ते आप जाने बलवंत किन में हुए जाय प्रसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुरु प्रसाद जा का मिटिया अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिरथारी अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुरु फिर अवतार अनेक जतन करा तुम नहीं द्रवे हर दर गह को कैसे गवे आपस को जो पला कहा वह तिसे पलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा का मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख ना ही कोई जाबे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता जब तारे कुबैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय देश जाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सैस कटे लग कूट धावे तृप्त न आवे माया पछ पावे अनक भोग विख्या के करे न तृप्त आवे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राजय सुपन मनोरथ वृत्ति सब का जय नाम रंग सर्व सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए करण करावन आपे आप सदा सदा नान कर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आपा प्रभ सोए जो किछ किन्नो सो अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग बूचै देखे करे बवेका पहि कापे अनेक मरे न बिनसे आवे न जाए नानक सद ही रहा समाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप किन्नु अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए तांत नंतर एक कै सोए अपने चलताप करने हार कौत करे रंग आपार मन मैं आप मन अपने माही नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने विख्यानी सच सच सत सब कीना कोट मध्य किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप व सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुख नारजा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे को रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भीतर संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन त्रिगद ज्यों किरमाए
संतन कै दुखन तृष्णा में जले, संत कै दुखन सब को चले, संत कै दुखन ते सब जाए, संत कै दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाहे, नान संत पावे ता ओए पीगत पाहे, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किंटिक न पाई, संत का निंदक मा त्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखी यार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत की निंदा दुख में दोग, नान संत पावे तो उसका भी हुए भोग, संत का दुख रिश्ता पवित्र, संत का दुखी किसै का नहीं मित्र, संत के दुखी को डाल लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी माँ अहंकारी, संत का दुखी सदा भिकारी, संत का दुखी जन्म मरे, संत की दुख न सुख ते टरे, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पावे ता ले मिलाए, संत का दुखी अदबीच ते टूटे, संत का दुखी के तय काज न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोता, ज्यों सास बिना मृत की लोथा, संत के दुखी की जड़ किच नाहि, अपन बीजा पे ही खाहि, संत के दुखी को वर्ण रखन हार, नान संत पावे तन लय उबार, संत का दुखियों बिल लाई, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाई, संत का दुखी भूखा नहीं राजे, ज्यों पावक इंदर नहीं त्रापे, संत का दुखी छुटे केला, ज्यों बुआड़ तिल की तमाही दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमिथिया कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो दिस पावे सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को तर गै मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उचलै निराशा, संत के दुख न तृष्ट कोई, जैसा पावे तैसा कोई खोए, पया किरत न मिटे कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट तिसकी करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, ब्रह्म की उस्तत करो दिन रात, सहत्या वो सास गिरा, सब कुछ वर्ते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थी, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिसा पर नाम दे बड़ भागी, नानक जन से श्लोक, तजो से आनक सुरजन हो, सिमर हो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम पहु जाय, अष्टपदी मानुकी टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक भगवान, जिसकै दिए रह अगाए, भौर न तृष्णा लागे आए, मारे रखे को आप, मानुकै किछ नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनो पेक ठाकुर का रंग, साध संग बिन सह सब संग, चरण चलो मार गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दर गै नान पूजल मथा, बड़भागी तेजन जग माहि, सदा सदा हर के गुण गाहि, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गणि संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाने, इत उत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मान्या, नानक तिन्हें निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, सार संग हर हर जिस कहत, सर्व रूप ते हर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बखियान, गिस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटी है जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक किसे न लागे दुख, जिसको हर ब्रह्म मन चित आवे, सो संत सुहेला नहीं दुलावे, जिस पर वे अपना कृपा करे, सो सेवक को किसते डरे, जैसा सतैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत् सब बुझिया, जब देखू तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, नै के जन्मे नै किछ मरे, अपन चलताप ही करे, आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मै, अपन के जुग तृष्ठा प्रताप, अविनाशी नाही किछ खंड, धारण धारे हो ब्रह्म।

सुभाय हो वै सो होए। करने हार पछाणे सो हे प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिसते उपजे तिस माए समायो, सुख निदान उन्हों बन आया। पुष्को आप दिन मा नानक प्रभ जनिक को जान सलोक। सर्व कला भरपूर प्राबिरता जानन हार, जाके सिमरन उतरी है नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी कांडन हार गोपाल, सर्व जी आयापे प्रतपाल। सगल की चिंता जिस मन माहे, तिसते बिरता कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप, अपना सी प्रव्यापे आप। अपन किया कछु न होए, जिसो प्राणी लोचै कोए। तिस बिना ही तेरे किछ काम, गत नानक जपे कर नाम। रूपवंत हुए नाही मोह है, प्रभ की जो सगल कट सो है। धनवंता हुए क्या को गर्भ है, जा सब किस तिसका दिया दर्भ है। अत सूरा जे को कहा वह, प्रभ की कला बिना कहता वह। जे को हुए वह दाता, और तिस देन हार जान गवार। जिस गुर पर सा टूट हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग। जो मंदिर को थम है थमन, त्यों गुरु का शब्द मन स्तमन। ज्यो पाखा नाव चढ़ तर, प्राणी गुर चरण अगत निस्तर। ज्यो अंधकार दीपक प्रकाश, गुरु दर्शन देख मन होए बेगा। ज्यो माव ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे। तिन संतन की बांछो तू हूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूर काहे बिरलाई है, पूर्व लिखे का लिखिया पाई है। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसै चितार। जो कछ करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अचान। कौन बसताई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माही, नानक पद सिद्धि कर जाए। जिस वखर को लैण तू आया, राम नाम संतन कर पाया। ताज मां लिहु मन भूल, राम नाम हृदय में तोल। लाद की संत सुचाल, वर्त्या विख्या जंजाल। धन धन कह सब कोय, मुख उजल हर दर गै सोए। हो व्यापार विरला व्यापार है, नानक ताके सद बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पीओ, अर्प साधु को अपना जियो। साधु की धूर करो स्नान, साधु पर जाइए कुर्बान। साध सेवा वड भागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनिक बिगंते साधु राख, हर गुण गाय अमृत रस चाख्या। उठ गई संत दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक को जीवा लनहार, भूखे को देवता धार। सर्व निधान जाके दृष्टि माए, पूर्व लिखे का लहना पाए। सब के तिसका करण जोग, तिस बिंदु सर हुआ न हो। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मले करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवे हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोई, जाके हृदय को हुए। सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुकैत। सची दिल सच्चा आकार, सच वर्त सच्चा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक रूप न रेख न रंग, किच त्रैगुण ते प्रभ भिन्न। तिस हे बुझाए नानका, जिस हो वै सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मानु के तू प्री त्याग। तिसते पर नाही किच कोई, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बिना आपे दाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद। साथ तेरे की चरणी पाऊ, नानक कै मन एवन राव। मन सा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरण भरण जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र अंजाने होर। अनदरू मंगल सजा कै, सब तो सुनिया करता कै। राज में राज योग में जोगी, तप में तुम कृत। तप में तपीश्वर ग्रस्त में भोगी, त्याई त्याई भगत सुख पाया। नानक तिस पुर का किन्त न पाया। जाकी लीला कीमित नाही, सगल देव हारे अवगाहे। पिता के जन्म की जाने पूत, सगल पुरोई अपने सूत। सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्या वैसे। त्यो गुण में जाको परमाए, जन्म मरे फिरिया वह जाए। ऊंच नीच इसके स्थान, जैसा जनावे तैसा। नानक जा नाना रूप, नाना जाके रंग। नाना पे करे करंग, नाना विद किनो विस्तार। प्रभ बनासी एक कंकार, नाना चलत करे किन बाहे। पूरे पूर्ण सबठाए, नाना विद कर बणत बनाई। अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ। जब जब जीवे नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड।

ਕੁਰਾਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਣਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਸੁਣ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੂਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਰ ਸਤ ਅਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਨੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਤ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲੀ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੇ ਸਭ ਭਲੀ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਈ ਵਿਸਵਾ ਸਤ ਨਾਨ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਰਤ ਬੁਝੈ ਜੇ ਕੋਏ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਰਸੋ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਵਰਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀ ਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭਏ ਬਿਸਮਾ ਜਿਨ ਬੂਝਿਆ ਤਿਸਾਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜਨ ਰਹੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਹੀ ਉਏ ਦਾਤੇ ਦੁ ਕੱਟ ਨਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨ ਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਭੇਖਣ ਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤਿਆਵਨ ਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਵਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਨਤਾ ਬੁਜਨ ਹਾਰ ਕੁ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭਿਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਸ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਭੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹਿਲੇ ਬਸਤ ਗਡਾਈ ਤਾ ਕੋ ਭਿੰਨਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਬੂਝੈ ਬੂਝਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਬਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਪਾਲਨ ਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੁਮਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰਾਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉਚਤੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਦਾ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰਾਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕੱਢ ਤਾਪ ਤਾ ਕੋ ਰੱਖ ਦੇ ਕਰ ਹਾਥ ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਹੁ ਭਾਤ ਜਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਤੇ ਜਾਤ ਮਾਰਨ ਰਾਖੈ ਵਰਨ ਕੋਈ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੀ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਬਲ ਕਵਿੜਾਣੀ ਬਾਰੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੰਥਨ ਤ੍ਰਪੀਐ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸਕੇ ਛਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਕਰ ਨਾਮ ਕਰ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ ਮੰਥਨ ਨਾਮ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦਕਾਮ ਬੋਲੂ ਜਾ ਜੀ ਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀਨੀ ਦਾਤ ਕਰੈ ਭਗਤਾ ਤੁਨ ਕਹਿ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੂ ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕ ਨਾ ਜਾਣੂ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਉਟ ਲਈ ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇਹ ਜਿਨ ਜਨ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਤੁਖ ਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਮ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਪਾ ਮਿਟਾਵੈ ਅਵਰ ਸਿਆਨਬ ਸਗਲੀ ਛਾੜ ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ ਆਵਨ ਜਾਨ ਨਾ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜੋ ਸਦ ਪੈਰਾ ਸਲੋਕ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੇ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡਭਾਗੀ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਹਲਤ ਬਲ ਸਵਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹਿ ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹਿ
आप इसको कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे, मन बिचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत हुए ने कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसाप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व निदान जी का दाता, अठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म में जंजन में पार ब्रह्म, एक कैप नहीं कच भरम, सह सियान भलया न जाइये, नान कैसा गुरु बड़ भागी पाइये, सफल दर्शन पेखत पुनीत, पर सत चरण गत निर्मल रीत, पेट संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय गवे, सुनकर बचन करण आगानी, मन संतोखा तुम पति आनी, पूरा गुरु क्यों जा का मंत्र, अमर दृष्ट पे कह हुए संत गुण, बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस भाव है तिसलय मिलाए, जे वाहे कुसत अनेक सतपुर पूर्ण भवे, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने न पाई, अनेक भगत बंदर नित कर है, चरण कमल हृदय सिमरह, सद बलिहारी सदगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, इव अरस पावै जन कोय, अमृत पीवै अमर सोहुए, उस पुर का नाही कदे विनाश, जा कै मन प्रगटे गुणता, साठ वैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को थे, मोह माया कै संग न लेप, मन मह राखै हर हर एक, अंधकार दीपक परगासी, नानक भरमो दुख तहते नासे, तब तुम्हारे ठाट वरताई, अनद पया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पाओ चुका निर्पाओ हुए बसे, सगल ब्याद मन ते कह नसे, जिसका सा तिन कृपा तारी, सार संग जप नाम मरारी, तित पाई चुके भ्रम गवन, सुन नानक हर हज श्रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिंदु जाना ही कोए, सर्व निरंतर एक सोए, उत्पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा, साध कै संग रच रचना अपनी, कल तारी अनक बार नानक बलिहारी, श्लोक साथ न चाले बिन भजन, बिखिया छगली चार, हर हर नाम कमावना, नानक इहो तन सार, अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवरूपा समीत विसार हो, चरण कमल हृदय में उतार हो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गह हो नाम हरवत, एह तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखु मन वाही, सर्व रोग नानक मिट जाही, जिस तन को चार कुं टुटता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बाचै मीत, सो सुख साधु संग प्रीत, जिस शोभा को करै भली करनी, सा शोभा भज हर की सरणी, अनिक उपावी रोग न जाए, रोग मिटै हरव कदलाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगै परवान, मन प्रबुद्ध हर कह नाय, दा दिस्तावता बैठाए, ताको बिघन लागे कोई, जा कर हृदय बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाऊ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भव बिन सह पूर्ण हुए आस, भगत पाया तुम प्रगास, तित कर जाए बसे बनासी, कौ नानक काटी जम्पासी, तत् विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, यों रतन जन्म का हुए उदार, हार हार सिमर प्राण आधार, अनेक उपावना छूटन हारे, सिमरत सास वेद विचारे, हर की भगत करो मल्लाए, मन वंचित नानक फल पाए, सांगना चालस तीर तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सुत मीत कुटंबर बनता, इनते कहो तुम कवन सनाता, राज रंग माया विस्तार, इनते कहो कवन छुटकार, अशास्ती रथ सवारी, झूठा डम झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझै न बेगाना, नाम विसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बोडू बेस्याने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माही, जन्म जन्म के किल बिक जाहे,
आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार पूत सत हर को नाओ, सह सुभाय नानु गुण गाओ। गुण गाव त्रि उतर समैल, बिन सुजाय हो मैं बिक फैल, हुए चिंत बसै सुख नाल, सास बिरासर नाम संभाल। छाड़ सियानु सगली मना, सास संग पावे सच तना, हर पूंजी संच करो बिहार, यहाँ सुख दर गय जयकार। सर्व निरंतर एको देख, कव नानक जाके मस्तक लेख, एको जप एको साला, एक सिमर एको मन आहे। एक इसके गुण गाओ अनंत, मंथन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरा, पूर्ण पूर्यो प्रव्याप। अनेक विस्तार एक ते पय, एक अराध प्राचित गए, मंथन अंतर एक प्रभराता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाय अष्टपदी। जाचक जन जाचै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम, सात जना की मांगो तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर। सदा सदा प्रभ के गुण गावूं, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवूं। चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करूं प्रभ की नित नीत। एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम प्रभ सारु। प्रभ की दृष्ट महा सुख हुए, हार रस पावे बिरला कोए। जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने। सुपार परे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। परे सरनान सब त्याग, अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग। बड़भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई। जन को प्रभ होयो दयालु, सेवक कीनो सदा निहाल। बंधन काट मुक जन भया, जन मरण दुख भ्रम गया। इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहया सत्संग हजूरी। जिसका सातिन लिया मिलाए, नानक भगती नाम समाए। सो क्यों बिसरै जे काल न पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै। सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया। सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै। सो क्यों बिसरै जे बिकते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै। गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। साजन संत करो एहो काम, वां त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरै नाम जपावो। भगत पाए तरिए संसार, बिन भगति तन हो सी चार। सर्व कल्याण सुख निध नाम, गूढ़त जात पाए विश्राम। सगल दुख का होत नास, नानक नाम जपो गुण तास। उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ, मंथन अंतर ही सुहाओ। नित्र उपेग दर सुख होए, मन बिकसै सात चरण धोए। भगजना कै मंथन रंग, बिरला को पावै संग। एक वस्त दी जय करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया। ताकि उपमा कही ना जाए, नानक रहया सर्व समाए। प्रभ बख्शन दीन दयाल, भगत वच्छल सदा कृपाल। अनाथ नाथ गोविंद गोपाल, सर्व कटा करत प्रतपाल। आदि गुरु कारण करतार, भगत जना के प्राण धार। जो जो जपै सो होए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत। हम निर्गुण यार नीच जानू, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान। सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए, एक निम करके गुण गाए। अनिक राज भोग बढ़े आई, हर के नाम की कथा मन पाई। बहु भोजन कापुर संगीत, रसना जपती हर हर नीत। भली सो करनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत। सास सों प्रभ देहु निवास, सर्व सुख नानक प्रगास। श्लोक सरगुण निर्गुण निरंकार, सुन समाधि आप। अपन किया नानकाया, पे ही फिर जाप अष्टपदी। जब कार कछ न दृष्टिता, पापन तब कहते होता। जब तारी अपन सुन समात, तब बैर विरोध के संक मात। जब इसका वर्ण चिन्ह जापत, तब हर्क सो कहो किस व्यापत। जब अपन आपा पार ब्रह्म, तब वो का किस होवत। परमापन खेला वर्ती जा, नानक करने हार न दूजा।
जब होवत प्रव केवल धनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक हरगम पारु तब नरक सुर कहो कौन अवतारु जब निर्गुण प्रभ सह सुभाई तब शिव सकत कहो हो कित ठाई जब आप अपने जो तरह तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर गम पार बिनासी सुख अपना सुन तय जन्म मरण को कहा बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रभ का तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे आपन आप आपिय चर जा नानक अपन रूप आपिय उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाणु तय कौन को मान कौन अभिमानु जय स्वरूप केवल जगतीश तय चल चिद्र लगत को कीस जय ज्योत स्वरूपी जो संग समावै तय किसे भूकवन तृप्तावै कर्ण करावन करने हार नान करते का नाय समार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपे प्रवीण तय बेद कतेव कहा कुचीन जब अपन आप उधार है तो सगन सगन कहा विचार है जे अपन ऊंचापन आप नीरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चीरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अचल अचेद भेद समाया वहां किसे व्याप तुमाया आपको अपया देश क्यों गुण का ना ही प्रवेश जय कहे एक भगवंता तय कौन चिंत किस लाग चिंता जय अपन आप आप तियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा बहु बेअंत ऊंचते ऊंचा नानक आपस को आपह पहुंचा जय आप रचियो प्रपंच कारु त्यो गुण में किन्नो विस्तार पापुन तय पई कहावत को नर को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल होमै मोह भरम पै पारु दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बखियान आपन खेल आप कर देखै खेल संकोचै तो नानक देखै जय विगत भगत है आप जय पसरै पसार संत प्रताप दुह पाक आपे धनी उनकी शोभा नुह बनी आपै कौतक करै आनंद चोज आपै रस भोगन निरजोग जिस भावै तिस आपन ना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै बेसुमारता गंते अतुलै ज्यों बुलाव हो त्यों नानक दास बोलै सलोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानके को पसरिया दूजा कह दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार आपहे का विस्तार जात भावै त सृष्ट उपाए अपने पाणे ले समाए तुम ते भिन्न नहीं किछ होए अपन सू सब जगत परोए जाकू प्रभ जीव आप बुझाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ गुनाथ जिस राखै तिस कोई न मारै सो मुआ जिस मनो बिसारै तिस तजवर का को जाए सब श्रीक निरंजन राय चीकी जुगत जा

पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुर का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेक, साथ साथ सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्याग हो तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साथ संग अगन सागर तरहो, हर तन के पर लेहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार, खेव कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उदारो जियो, गुण गोविंद अमृत रस पियो, चित चितवो नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दामोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का है आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमली कलाल रतन, सुनत कमावत होत उदार, आप तरह लोक कह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग, जय जय शब्द अनाहत वाजै, सुन सुन अनद करे प्रभ गाजै, प्रगटे गोपाल महांत कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे, शरण जोग सुन सरणी आए, कर कृपा प्रभाव मिलाए, मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन, सुप्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण होई सेव की सेव, आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभही खेप हमारी, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसै सुहोत निदान, सर्विच्छा ताकि पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब त्युग छुपाए स्थान, बौर न होवे आवन जान, हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम सांत रित नव नित, बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभु ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सबके मत सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत् का बेता, समदर्शी एक दृष्टिता, ए फल तिस जन कै मुख भने, गुरु नानक नाम वचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग में ताकी गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत शास्त्र वेद वकाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जाके मस्त कर्म प्रपाए, साध शरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रवजीत, जन मरण ताका दुख निवारै, दुर्लभ दे तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि समानी,

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लख वार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार सह सियाणपां लख होहे ता इक न चलै नाल केव सचियारा होइऐ केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेखो दुख सुख पाई है इक ना हुक्मी बखसीस एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निसाण गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेह गावै को जी लै फिर देह गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार अख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगह रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेवया तिन पाया मान नानक गावीऐ गुणी निधान गावीऐ सुनिऐ मन रखिऐ भाउ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जे ती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतियां गुण दे तेहा कोए न सुजई जे तिस गुण कोए करे सुना है सद पीर सुरनाथ सुना है धरत धवल आकाश सुना है दीप लो पाताल सुना है कोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नास सुना है ईसर ब्रह्मा इंद सुना है मुख साला हनुमंद सुना है जोग जुगत तन भेद सुना है शासत सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश सुना है सत संतोख ज्ञान सुना है आठ सठ का इशनान सुना है पढ़ पढ़ पावै मान सुना है लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुना है दुख पाप का नाश
सुना है सारा गुणा की गाह, सुना है सेख पीर पात साह, सुना है अंधे पावे राह, सुना है हाथ होवे असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुना है दुख पाप का नाश, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पशुताए, कागद कलम न लिखण हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन न जाने मान कोए, मन सुरत हुवे मन बुद्ध, मन सगल पवन की सुध, मन मोहे चोटा ना खाए, मन जम कह साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन मार्ग ठाक न पाए, मन पथ स्यों प्रगट जाए, मन मग न चले पंथ, मन धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन पावह मुख द्वार, मन परवर साधार, मन तर तारी गुर सेखो, मन नानक पवे ही ना पेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावा है दरगह मान, पंचा सो है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह करे विचार, करते कह करने नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तवलै उपर केता पार, धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया बुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवालहो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन राहे ही उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पख सार, असंख मोन लिब लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वाड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पाखो खाहे, असंख निंदक सिर कर है पार, नानक नीच का है विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख काहे ही सिर पार होए, अखरी नाम अखरी सलाह, अखरी ज्ञान गीत गुणगाह, अखरी लिखण बोलण बाण, अखरा सिर संजोग बखाण, जिन ए लिखे तिस सिर नाहे, जिव फुरमाए तिव तिव पाहे, जेता कीता तेता नाओ, विण नावै नाही को थाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, भरियै हाथ पैर तान देह, पानी धोता है उतर सोखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लइए ओह धोए, भरियै मत पापा कै संग, ओह धोपै नावै कै रंग, उन्नी पापी आखण नाहे, कर कर करना लिख लै जाहो, आपे बीज आपे ही खाहो, नानक हुक्मी आवाहो जाहो, तीरथ तप दया दत दान, जे को पावै तिल का मान, सुनया मन्या मन कीता पाओ,
अंतरगत तीरथ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए वेण गुण तीते भगत ना होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सो वेला वखत कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माह कवन जित हुआ आकार वेल न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत न पायो खादिया जे लेखन लेख पुराण थित वार न जोगी जाने रुत माह न कोई जा करता सरठी खो साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरने केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाही कीता जा का होवै नानक जी को आपौ जाणै अगै गया ना सोहै पातला पाताल लख आकाशा आकाश ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक तात लेखा होए ता लिखी है लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही एती सूरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिया है समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मन होना भी सरा है अंत न सिथती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुणन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताकि अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा साहेब ऊचा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा होवै कोए तिस ऊचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड्डा दाता तिल न तमाए किते मंगै जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुट है बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे केतिया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणे होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मोह खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनों बख से सिफत सलाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाहे अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल करम अमुल फुरमान अमुलो अमुल आखिया न जाए आख आख रहे ले बलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े कर है वख्याण आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नार मुन जन सेव केते आख है आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख ना सक है केई के जे वड़ भावे ते वड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल विगाड़ ता लिखिए सिर गावारा गावार सो दर कीहा सो घर कीहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे केते राग परी स्यों कहियन केते गावन हारे गावै तुहनो पौन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावै चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारी गावै ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे
गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाए तेरे आठ साठ तीरथ नहाले गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सेई तुदनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जीव ते सदी वडे आई जो तिस भावै सोई कर सी हुक्म न करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की करहै बिभूत खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जाग जीत आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी साध जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चला वह लिखे आवह भाग आदेश तिसा आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान जिव ते सुभावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ओ ना नदर ना आवै बहुता एहो वेडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बहु लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़ियां चढ़िए होए अकीस सुन गला आकाश की कीता आई रीस नानक नगरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना श्रुति ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुति तिथि वार पवन पाणी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पावन पाणी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाट घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरति सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कूड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िए बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहै पिछै पशुताए तिथै घड़िए सूरत मत मान बुद्ध
तिथे घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्मखंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर तिथे जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप न कथने जाहे ना उहे मरह न ठागे जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथे भगत वसा है केलो करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथ है ता अंत ना अंत।

जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पौ खला अगन तपताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल कड़ी है शब्द सच्ची।

नमस्तं आजाते नमस्तं आपाते नमस्तं अमजबे नमस्तास्त अजबे आदेशं आदेशे नमस्तं आपेसे नमस्तं निरतमे नमस्तं निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वदयाले नमो सर्वरूपे नमो सर्वकूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तास्त देव नमस्तं अपेव नमस्तं अजन्मे नमस्तं सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपाहुने नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तास्त दयाले नमस्तं अवर्णे नमस्तं अमरणे नमस्तं जरारं नमस्तं कृतारं नमो सर्वतन्त्रे नमो सात अबंधे नमस्तं निरसाके नमस्तं निर्वाके नमस्तं रहीमे नमस्तं करीमे नमस्तं अनन्ते नमस्तं महन्ते नमस्तस्त रागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वशोकं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाची शांत त्वा प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निधान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंत है अबंध है निर्भूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अशूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबा है अगा है अमान है निधान है अनेक है फिर एक है पुजंग प्रयात छंद नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्वपाले नमो सर्वगौणे नमो सर्वपाहुणे अनंगी अनाथे नरसंगी प्रमाथे नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे प्रपंगी प्रमाथे समस्ति विभूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज रजवेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगवेश्वरं परम सिद्धे नमो राज रजवेश्वरं परम वृद्धे नमो शास्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेखी अपरमी अभोगी अभुगते नमो जोग जोगवेश्वरं परम जुगते नमो नेत नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुधर्मे नमो रोगहर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं ईशनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बोधदा विरुद्धकर्ता अधो उर्ध अर्धं अगं ओगहर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सेददाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तास्ततामं तेराजुर्चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं आदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात शांद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निधाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं प्रमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं नमो सर्वज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृष्णं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी चरपट शांत त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगी अचल भोगी अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं

பிராணங் சர்வங் பிராணங் சர்வங் புகுதா சர்வங் ஜுகுதா சர்வங் தேவங் சர்வங் தேவங் சர்வங் காலே சர்வங் பாலே ருவால் சாந்தத்வா பிரசாத் ஆதரூப அநாத மூரத் அஜோன புருக அபார் சர்வமான திரமான தேவ அபேவ ஆத உதார் சர்வ பாலக சர்வ காலக சர்வ கோபுன கால யத்ர தத்ர விராஜஹி அவதூத ரூப ரசால் நாம தாம நா ஜாத ஜாக்கர் ரூப ரங்க நா ரேக ஆத புருக உதார மூரத் அஜோன ஆத அசேக தேச ஔர நா பேச ஜாக்கர் ரூப ரேக நா ராக யத்ர தத்ர திசா விசா ஹோய ஃபேல்யோ அனுராக நாம காம பிஹீன பேகத தாமஹூ நஹ ஜாஹே சர்வமான சர்வத்ர மான சதாயவ மான ததாஹே ஏக மூரத் அநேக தர்சன கீன ரூப அநேக கேல கேல அகேல கேலன அந்தகோ ஃபிர ஏக தேவ பேவ நா ஜானஹி ஜிஹ பேத ஔர கதேவ ரூப ரங்க நா ஜாத பாத சோ ஜானஹி கேஹ ஜேவ தாத் மாத நா ஜாத ஜாக்கர ஜானம மரண பிஹீன சக்கர பக்கர ஃபிரை சதுர சக் மானை பூரத்தீன லோக சௌதஹ கே பிகாய ஜக ஜாபஹி ஜிஹ ஜாப் ஆத தேவ அநாத மூரத் தாப்பேயோ சபை ஜிஹ தாப் பரம ரூப புனீத மூரத் பூரண புருக அபார் சர்வ பிசவரச்சியோ சுயம்பவ கடன பஞ்சன ஹார் காலஹீன கலாசஞ்சுகத் அகால புருக அதேஸ் தர்ம தாம சோ பரம ரஹத் அபூத் அலக் அபேஸ் அங்க ராக நாரங்க ஜாக ஹை ஜாத பாத நாம கர்ப கஞ்சன துஷ்ட பஞ்சன முக்த தாயக காம ஆப ரூப அமீக அன உஸ்தத ஏக புருக அவதூத் கர்ப கஞ்சன சர்ப பஞ்சன ஆத ரூப அசூத் அங்கஹீன அபங்க அநாத்தம ஏக புருக அபார் சர்வ லாயக சர்வ காயக சர்வ கோ பிரத பார் சர்வகந்தா சர்வஹந்தா சர்வதே அனபேக சர்வசாஸ்திர ந ஜானஹி ஜெஹ ரூப ரங்க அர ரேக பாரம வேத புராண ஜாக ஹ நேத பாகத நேத கூட சிம்ரத புராண சாஸ்திர ந ஆவஹி வஹ சேத மது பார சந்த துவா பிரசாத் குணகன உதார் மஹிமா அபார் ஆசன அபங்க உபமா அனங்க அனபவ பிரகாஷ நிச தின அநாச அஜான் பாஹு ஷாஹான் ஷாஹ ராஜான் ராஜ பானான் பான் தேவான் தேவ உபமா மகான் இந்திரான் இந்திர பாலான் பால் ரங்கான் ரங்க காலான் கால் அனுபூத அங்க அபா அபங்க கத்மித அபார் குணகன் உதார் முனகன் பிரணாம நிர்பய நிகாம ஆத்தூத பிரச்சண்ட மேதகத அகண்ட ஆலேசிய கர்ம அத்ரிச தர்ம சர்வா பிரணாடே அண்டண்ட பாடே ஜாத்ரீ சாந்தத்வ பிரசாத் கோவிந்தே முகந்தே உதாரே அபாரே ஹரியம் கரியம் நிரநாமே அகாமே புஜங் பிரயாத் சந்த் சத்ர சக்கர கர்த்தா சத்ர சக்கர ஹர்த்தா சத்ர சக்கர தானே சத்ர சக்கர ஜானே சத்ர சக்கர வர்த்தி சத்ர சக்கர பரதி சத்ர சக்கர பாலே சத்ர சக்கர காலே சத்ர சக்கர பாசே சத்ர சக்கர வாசே சத்ர சக்கர மானே சத்ர சக்கர தானே ஜாச்சரீ சந்த் ந சத்ர ந மித்ர ந பரமங் ந பித்ர ந கர்மங் ந காயே அஜன்மங் அஜாயே ந சித்ர ந மித்ர பரே ஹ பவித்ர பிரதீச ஆதீச அதிருஷ அகிருஷ பகவதி சந்த் துவா பிரசாத் காத்தே கே ஆசேஜ தேச கே ஆபிஜ பேச கே ஆகஞ்ச கர்ம கே ஆபஞ்ச பரம கே ஆபேஜ லோக கே ஆதித் சோக கே ஆவதூத் வர்ண கே பிபூத் கர்ண கே ராஜங் பிரபாஹ கே தர்மங் துஜாஹ கே ஆசோக வர்ண கே சர்வா ஆபர்ண கே ஜக்தங் கிருதி ஹ கே சத்ரங் சத்ரி ஹ கே பிரமங் ஸ்வரூபே கே அனுபவ அனுப கே ஆத அதேவ ஹ கே ஆப அபேவ ஹ கே சித்ரங் பஹீன கே ஏக அதீன கே ரோஜி ரஜாக ரஹீமே ரிஹாக கே பாக பேவ ஹ கே கைபூல கைப ஹ கே அபூல குணா ஹ கே ஷாஹான் ஷாஹ கே காரண புனத ஹ கே ரோஜி தஹந்த ஹ கே ராஜ கரஹீம ஹ கே கர்மங் கரீம ஹ கே சர்வங் கலீ ஹ கே சர்வங் தலீ ஹ கே சர்வத்ர மானே ஹ கே சர்வத்ர தானே ஹ கே சர்வத்ர கௌனே கே சர்வத்ர பௌனே கே சர்வத்ர தேசாய கே சர்வத்ர பேசாய கே சர்வத்ர ராஜாய கே சர்வத்ர சாஜாய கே சர்வத்ர தீன கே சர்வத்ர லீன கே சர்வத்ர ஜாஹோ கே சர்வத்ர பாஹோ கே சர்வத்ர தேசாய கே சர்வத்ர பேசாய கே சர்வத்ர காலாய கே சர்வத்ர பாலாய
ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਹੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਗੰਤਾ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਖੀ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਕਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਰਾਜੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਸੁਖ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਤ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਦੇਸਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭੇਸਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨਯ ਸਦੈਵ ਪ੍ਰਧਾਨਯ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਜਾਪਿ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਥਾਪਿ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਭਾਨ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਇੰਦਰ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬਤਰ ਚੰਦਰ ਹੈ ਕੇ ਸਰਬੰ ਕਲੀਮੇ ਕੇ ਪਰਮੰ ਫਹੀਮੇ ਕੇ ਆਕਲ ਅਲਾਮੇ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਾਮੇ ਕੇ ਹੁਸਨਲ ਵਜੂ ਹੈ ਤਮਾਮਲ ਰਜੂ ਹੈ ਹਮੇ ਸੋ ਸਲਾਮੇ ਸਲੀਕਤ ਮੁਦਾਮੇ ਗਨੀਮੁਲ ਸਿਕਸਤ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਪਰਸਤ ਹੈ ਬਿਲੰਦਲ ਮਕਾਨ ਜ਼ਮੀਨਲ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈ ਤਮੀਜੁਲ ਤਮਾਮੇ ਰਜੂਅਲ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਹਰੀਫਲ ਅਜੀਮੇ ਰਜ਼ਾਇਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਭੇਦ ਹੈ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਜੀਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਕਿਰਾਜ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮੁਕਤ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸੁਜੁਗਤ ਸੁਦਾ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਭੇਦੀ ਅਨੂਪ ਹੈ ਸਮਸਤੁ ਪਰਾਜ ਹੈ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਦੈਵਲ ਅਕਾਮ ਹੈ ਨਿਰਬਾਧ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਗਾਧ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਓਮ ਆਦ ਰੂਪੇ ਅਨਾਦ ਸਰੂਪੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭਰਗੰ ਤ੍ਰਿਬਾਧੇ ਅਗੰਜੇ ਅਗਾਧੇ ਸੁਭੰ ਸਰਬਭਾਗੇ ਸੁਸਰਬਾ ਅਨੁਰਾਗੀ ਤ੍ਰਿਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਅਛਿਜ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਕ੍ਰਿਤਿਉਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਸਦੈਵ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇਭੁਗਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਨਿਰੁਕਤ ਸਦਾ ਹੈ ਬੇਭੁਗਤ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਨਉਕਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਪਰਯੁਗਤ ਅਨੂਪ ਹੈ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਅਭੰਗ ਹੈ ਅਨੰਗ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਜੁਗਾਦ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਭੈ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਤੂਤ ਹੈ ਅਨਾਸ ਹੈ ਉਦਾਸ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਅਭਗਤ ਹੈ ਵਿਰਕਤ ਹੈ ਅਨਾਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਨਿਚਿੰਤ ਹੈ ਸੁਨਿੰਤ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਦੇਖ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਟਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਭ ਹੈ ਅਨਿਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਨਿਤ ਹੈ ਸੁਨਿਤ ਹੈ ਅਜਾਤ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਚਰਪਟ ਛੰਦ ਤੋਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਰਬੰ ਹੰਤਾ ਸਰਬੰ ਗੰਤਾ ਸਰਬੰ ਖਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਗਿਆਤਾ ਸਰਬੰ ਹਰਤਾ ਸਰਬੰ ਕਰਤਾ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਪ੍ਰਾਣੰ ਸਰਬੰ ਕਰਮੰ ਸਰਬੰ ਧਰਮੰ ਸਰਬੰ ਜੁਗਤਾ ਸਰਬੰ ਮੁਕਤਾ ਰਸਾਵਲ ਛੰਦ ਤੋਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਮੋ ਨਰਕ ਨਾਸੇ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਕਾਸੇ ਅਨੰਗੰ ਸਰੂਪੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ ਪ੍ਰਮਾਥੰ ਪ੍ਰਮਾਥੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਸਾਥੇ ਅਗਾਧ ਸਰੂਪੇ ਨਿਰਬਾਧ ਵਿਭੂਤੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਤ੍ਰਿਭੰਗੀ ਤ੍ਰਿਕਾਮੇ ਨਿਰਭੰਗੀ ਸਰੂਪੇ ਸਰਭੰਗੀ ਅਨੂਪੇ ਨਾ ਪੋਤਰੈ ਨਾ ਪੁੱਤਰੈ ਨਾ ਸਤਰੈ ਨਾ ਮਿੱਤਰੈ ਨਾ ਤਾਤੈ ਨਾ ਮਾਤੈ ਨਾ ਜਾਤੈ ਨਾ ਪਾਤੈ ਨਿਰਸਾਖੰ ਸਰੀਕ ਹੈ ਅਮਿਤੋ ਅਮੀਤ ਹੈ ਸਦੈਵੰ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ ਭਗਵਤੀ ਛੰਦ ਤੁਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਜ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ ਹਮੇ ਸੁਲ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹਿੰਦ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੁਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ ਗਨੀਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਿਕਨ ਹੈ ਹਿਰਾਸੁਲ ਫਿਕਨ ਹੈ ਕਲੰਕਨ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਅਗੰਜੁਲ ਗਨੀਮ ਹੈ ਰਜ਼ਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਜੁਬਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਕੰ ਪ੍ਰਣਾਸ ਹੈ ਬਹਿਸਤੁਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬੁਲ ਗਵਨ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਰਵਨ ਹੈ ਹਮੇ ਤਮਾਮੁਲ ਤਮੀਜ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਜੀਜ ਹੈ ਪ੍ਰੰਗ ਪਰਮ ਈਸ ਹੈ ਸਮਸਤੁਲ ਅਦੀਸ ਹੈ ਅਦੇਸੁਲ ਅਲੇਖ ਹੈ ਹਮੇਸੁਲ ਅਭੇਖ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਲ ਜ਼ਮਾ ਹੈ ਅਮੀਕੁਲ ਇਮਾ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮਲ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋਰਤ ਜਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਵਿਭੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਪਸਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮ ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲਮ ਅਨੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤੋ ਅਭੰਗ ਹੈ ਮਧੁਭਾਰ ਸ਼ੰਤੋ ਅਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਗੁਣਗਨ ਮੁਦਾਮ ਹਰਬਰ ਆਗੰਜ ਹਰ ਨਰ ਪ੍ਰਭੰਜ ਅਨਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਮੁਨ ਮਨ ਸਲਾਮ ਹਰ ਨਰ ਆਖੰਡ ਬਰ ਨਰ ਅਮੰਡ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਮੁਨ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਣਗਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜਲ ਥਲ ਮੁਦਾਮ ਅਨਸ਼ਿਜ ਅੰਗ ਆਸਨ ਅਭੰਗ ਉਪਮਾ ਅਪਾਰ ਗਤਮਿਤ ਉਦਾਰ ਜਲ ਥਲ ਅਮੰਡ ਦਿਸ ਵਿਸ ਅਭੰਡ ਜਲ ਥਲ ਮਹੰਤ ਦਿਸ ਵਿਸ ਬੇਅੰਤ ਅਨੁਭਵ ਅਨਾਸ ਧ੍ਰਿਤ ਧਰ ਧੁਰਾਸ ਅਜਾਨ ਬਾਹੋ ਏਕ ਸਦਾਹ ਓਅੰਕਾਰ ਆਦਿ ਕਥਨੀ ਅਨਾਦ ਖਲਖੰਡ ਖਿਆਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ ਅਨਸ਼ਿਜ ਗਾਤ ਆਜੀਜ ਨਾ ਬਾਤ
अन झंज गात अन रंज बात अन टुट पंडहर अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वा प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उभारण है तृत के तरण है जग की करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्व पास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है पारते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है धरणी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भव भंजन है अरिगंजन है रे प्रतापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकार है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग काम संग शांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो योग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपह अभय अभू अजू अनास अकास अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अटा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणमे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे इंद्र कामंग विभूते समस्त स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी प्रीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं करीमुल रहीम में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विभूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते।

सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चरण लागे। सुनते पुनीत कहते पवित बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्चे मत पत का राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीव श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारिया गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन दीदार सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं।

0: संत सर्वत्र रमण नानक अघनासन जगदी सुर है। वाहिगुरु जी का खालसा
1: वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जीओ, सतगुरां दी अपार बख्शिश रहमत होई। अमृत वेला सतगुरां ने सानूं बख्शिश कीता है। तुसीं बड़े प्यार सत्कार भावना दे नाल अमृत वेले सतगुरां दी पावन गोद विच जुड़ बैठ के संपूर्ण आसा की वार दे शब्द कीर्तन सरवण कीते ने। उपरंत अज दे हुक्मनामे दीआं विचारां साडे बहुत सतकारयोग भाई साहिब भाई गुरमेल सिंह जी टोरंटो वाले उन्हां दी रचना तों सरवण कीते अरदास विच शामिल होए हो पावन पवित्र हुक्मनामा सरवण कीता है। सतगुरु कृपा करन साडा सारयां दा गाव्या सुणिया महाराज अपने दर ते प्रवान करन। इसे तरह नाम बाणी नाल जुड़े रही आप संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। बेनती है गुरु घर दीआं नॉर्थ हाल ते साउथ हाल बिल्डिंगां बन रहीआं ने, आप संगत जरूर उहदे विच सहयोग पाओ जी। अपनी दसबंधी कारपेट कट के गुरु घर दे विच सेवा करो जी। महाराज कृपा करन सेवा नूं भाग लाउण जीओ। उस तों उपरंत बेनती है खालसा स्कूल दीआं एडमिशनां ओपन हो चुकियां ने, आप उन्हां दी ऑनलाइन जाके बच्चों की एडमिशन करा सकते हो, जरूर कराओ जीओ। 2 अगस्त नूं भाई भुपिंदर सिंह जी हाजूरी रागी श्री दरबार साहब अमृतसर साहब वाले अपने कोल पहुँच रहे हैं। उन्हां दे दुपहर का समा होएगा जी 11:30 बजे तो लैके 12:30 बजे तक। आप संगतां दे चरणां च बेनती जरूर पहुंचने की कृपालता करनी जीओ। 7 अगस्त नूं धन धन साहब श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का प्रकाश पुरब आ रहा, आप संगतां दे सहयोग नाल मनाया जाएगा, जरूर पहुंचने की कृपालता करनी। 7, 8, 9 अगस्त नूं साडे कोल सिख पंथ दे महान संत महापुरख संत रणजीत सिंह जी ढड्डरियां वाले इत्थे पहुंच चुके ने, जिन्हां दा समा होएगा 7, 8 अगस्त नूं शाम नूं 6 बजे तो लैके 9 बजे तक, अते 9 अगस्त नूं उन्हां दा समा होएगा जी दुपहरे 11 बजे तो लैके 2 बजे तक। आप संगतां दे चरणां च बेनती जरूर पहुंचने की कृपालता करनी जीओ। 17 अगस्त नूं संगरांद दा दिहाड़ा है, उस दिन भी पहुंचने की कृपालता करनी जीओ। 11, 12, 13 सितंबर नूं 31 राग दरबार कीर्तन जो हर साल गुरु घर के प्रबंधक वीर वालों कराया जाता इस साल भी करवाया जा रहा, जरूर समा नोट करना जीओ। होर जानकारी वास्ते गुरु घर के बहुत सत्कारयोग सकत्र साहब सरदार रजिंदर सिंह जी मंगर साहब उन्होंने तुसी संपर्क कर सकते हो। उन्हों का फोन नंबर है जी 4087124145। उन्हों को होर जानकारी ले सकते जी, गुरु के लंगर तैयार ने, छके जाने की कृपालता करनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आओ जो लड़ीवार सहज पाठ चल रहे हैं, भाई साहब भाई नवनीत सिंह जी पहुंच चुके हैं, उन्होंने रितना तो सहज पाठ श्रवण करिए जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान्यो गुरु रूप साध संगत जी, आओ समा होया अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ दा। अज पावन अंग 792 तो श्री सहज पाठ अगे आपां प्रारंभ करने हन। प्यार सहित आप जी ने हाजरियां भरनिया हन जी। 792 अंग तो अज दे श्री सहज पाठ प्रारंभ हो रहे हैं।

रहाउ। तब लग प्राणी तिसै सरेवहु, जब लग घट महसासा। जे घट जाए तब पाउ न जासी, हर के चरण निवासा। जिसको शब्द बसावे अंतर, चूकै तिसह प्यासा। हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै, मन जिन ढाले पासा। जो जन जान भजहै।

किसी की बोई ऐसा दिन दुखाला हार के लोगा मोको नीत डसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पह पुकारिया तिन्हों लिया उबारी रहा

ऊचे मंदर साल रसोई, एक घरी फुन रहन न होई। एहो तन ऐसा जैसे घास की टाटी, जल गयो घास रल गयो माटी। रहाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काढ़ सवेरा। घर की नार उरह तन लागी।

अगमय गोचर अलख अपारा, चिंता करो हमारी। जल थल महियल भरपूर लीना, घट घट जोत तुम्हारी।

रहाओ। तू दयाल दयापत दाता, क्या इह जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझ ते हुए, ऐसा आख वखाणे, गुरमुख हुवै सो मुक्त कहियै, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी, सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सुवारे, भरम भुलाने से मन मुख कहियै, ना उरवार ना पारे, जिसनों नदर कर

नानक भाग हुवै जिस मस्तक काल है मार बिदारे। बिलावल महला तीजा अतुल।

माया का रूप सब तिसते होए, जिसनु मेले सो निर्मल होए, जिसनु लाए लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव तात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुरु

जत संयम तीर्थ उना जुगा का धर्म है, कल मह कीरत हर नामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है, सोध देखो बेद पुराना। गुरमुख जिनी ते आया हर हर।

कहत सुनत सबे सुख पाव है, मानत पाहे निदाना। भिलावल महला तीजा, गुरमुख प्रीत जिसनु आपे लाए, तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए। मंगल नारी गावह आए, मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाँ तिन बलिहार है,

हम करियहु, जन नानक दास दासना। बिलावल महला चौथा। हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती, शरणागत पुरख अजन्मा। कर कृपा रख ले वो मेरे ठाकुर, हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन भज राम नामे रामा, गुरमत हर रस पाइए, और त्याग हो निफल कामा। रहाओ

तिन वड दुख सहमा ओए फिर जोन पवाई है मंद भागी मूड अकर्मा हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड कर्मा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जन्मा बिलावल महला चौथा हमरा चित लुभत मोहि बिखिया बहु दुर्मत मैल भरा तुमरी सेवा कर ना साकह प्रभु हम क्यों कर मुग्ध तरा मेरे मन जापु नरहर नाम नरहरा जन ऊपर कृपा प्रभ धारी मिल सतगुर पार परा रहाओ हमरे पिता ठाकुर प्रभ स्वामी हर देहु मती जस करा तुमरे संग लगी से उदरे जो संग काष्ट लोह तरा साकत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेव न करा ते नर भागहीन दोहचारी वे जन्म मुए फिर मरा जिनको तुम हर मेलुह स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भजिया

सतगुर सेव सफल हर दर्शन, मिल अमृत हर रस पियहु, हर हर नाम अमृत हर मीठा, हर संतोह चाख दिखो, गुरमत हर रस मीठा लागा, तिन बिसरे सब

खत्री ब्राह्मण सूद वैस को जापै हर मंत्र जपैनी गुर सतगुर पार ब्रह्म कर पूजो नित सेव हो दिन सब रैनी हर जन देखो सतगुर नैनी जो इच्छो सोई फल पावो हर बोलो गुरम।

यम के छंदे, जप मन हर हर नाम गोबिंदे। वडभागी गुरु सतगुरु पाया, गुण गाए परमानंदे रहा। साकत मूड माया के बदिक, विच माया फिर है फिरंदे। तृष्णा जलत किरत के बादे, ज्यों तेली

परम सम्मान योग गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो सतगुरां दे दरबार विच बैठ के, घरां विच बैठ के अमृत बाणी दे श्री सहज पाठ नाल जुड़दे हो। गुरुदेव जी कृपा करन, सभना नूं दरों करो नाम दान, गुरसिखी जीवन चढ़दी कला बख्शिश करके नवाजन। पढ़ी सुनी बाणी दा भाव सभना नूं सतगुरु जी प्रदान करन। अगाध बोध बाणी पढ़दियां हुईयां बेअंत बेअंत भुल्लां दी खिमा प्यार सहित फतेह गजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जिनाते उदी नजर हो जाए ते फिर तेनू कारजा नू दसन दी लोड़ नहीं, तेरे कारजा पीरास हो जाए। उन्हों पता है मेरे बच्चे नू, मेरे सिख सेवादार नू किस किस चीज दी लोड़ है। इस दर विच हमेशा भरोसा भावना बना के आइए, देर हो सकती है अंधेर भी, आग लगदे हैं समा भी लग जाता है, गुरु टनका के भी वेखदा वे कड़ा कच्चा है कि पक्का है। जिहड़े कच्चे ने वो फिर दर ही बदलते रहते, गल बनी नहीं हुण उहदे मगर चलीए, उत्थे भी गल नहीं बनी फिर होर किते चलीए। पर गुरु नानक साहब जी कह रहे ने तू डोली ना, भरोसा अडोलता बना के रखी। इस घर विच अज तक कोई झोली खाली नहीं, हिंदुस्तान ते जदों दुखां दा पहाड़ टुटिया, औरंगजेब कहिंदा है जां ते मुसलमान बन जो जां मौत कबूल कर लो। सवा सवा मन जनेऊ उतार के रोटी खांदा सी। उन्हें सोचिया एक एक नू मुसलमान बनावांगे, बड़ा समा लग जाएगा। फिर कहिंदे हुक्म कीता इन्हां दा गुरु लभो, जिसनू मना लईए फिर उहदे करके सारे आपे मन जाणगे। हुण हिंदू वीरां ने, वड्डे वड्डे ब्राह्मणां ने, पंडतां ने हर किसे अगे फरियाद कीती पर कोई बांह पकड़न वाला नहीं। फिर पंडित कृपा राम वर्गियां नू सोझी होई वी गुरु नानक दा घर बाकी है, उत्थों कोई झोली खाली नहीं आउंदी। दुख वड्डा सी छोटा नहीं, ते सारे दुखां नू इंज कह लईए, सृष्टि के सारे दुखां नू गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने आप ते लै लिया। ते उन्हां पंडतां दी 500 पंडतां दी ही ने वर्ल्ड दी अपने तन दी चादर बना के, धर्म हेत साका जिन किया सीस दिया पर सिर ना दिया। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, किनो बड़ो कलू में साका। वेखो हालांकि धर्म दूजा है पर गुरु गोबिंद सिंह जी 8-9 साल दे ने, गुरु तेग बहादुर जी कहंदे ने इन्हां दे धर्म ते दुखां दा संकट है, पहाड़ टुट पिया पर असी कोशिश करांगे रखण दी। महाराज ने रखिया, माण नहीं कीता सी रखांगे असी ये कर देंगे नहीं। मीत करे सोई हम माना, मीत के करतब कुशल समाना, जो निरंकार नूं पावे उहदी रजा विच कुर्बानी दे दित्ती चांदनी चौंक विच। ते हिंदुस्तान वास्ते खुशियां दी लहरां बहरां बन गईयां। अज हिंदुआं दे मंदरां विच भी आरती गूंजां, लहरां बहरां खुशियां, ये गुरु तेग बहादुर साहिब जी दी देन है। जिहदे ते टुट जाए ना फिर ओ नहीं वेखदा वी इहदा दुख किन्ना वड्डा है, ओ फिर अपनी जिम्मेवारी लै लैंदा है। सतगुरु मैं तेरे चरणां विच आया, हथ जोड़ के तुहाडी नजर लैण वास्ते आया। तुहाडे कोलो बड़ी दुनिया बड़ा कुछ लै जांदी है, बड़ा कुछ लै जांदी है, पर तेरी नजर किसे विरले नूं मिलदी है। याद रखी, कोई कोई गुरु दीआं खुशियां लै सकदा है। पैसा लैण वाले बड़े ने, गड्डियां लैण वाले, रिश्ते बनाउण वाले, धी पुत्र मंगण वाले, पलाट जमीन जायदाद मंगण वाले, पर कोई है

के अपने दर घर दी सेवा दे योग बना लेना। सतगुरु जी कृपा करनी, सुभाग जोड़ी दे सिर ते सदा मेहरा भरिया हथ रखना। ग्रिस धर्म दियां खुशियां खेड़े झोली विच पाउणियां, ग्रिस दियां जिम्मेवारियां निभाउण दे लई आप जी ने सदा बल उद्दम अते मार्ग दर्शन करदे रहना। रहमतां करनियां दोहां परिवारां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना। आपसी प्रेम प्यार भावना इतफाक दी दात बख्शिश करके नवाजना। सुभाग जोड़ी नू गुरसिक्खी जीवन प्रदान करना। रहमता करनिया नाम दा रंग साधु दा संग निश्चा अभंग बख्शिश करना। सतगुरु जीओ इस वक्त आप जी के हजूर सुभाग जोड़ी वल्लों आप जियां नू सुंदर पोशाक के भेट कीते गए। आप जियां ने अंगीकार करने सदीव काल पड़दे खजने बख्शिश कीते भंडारियां विच्चों कड़ाहा प्रसाद दी देग हाजर है। दर प्रवान होवे प्रवान होया प्रसाद संगत विच वरते। सतगुरु जी बेअंत संगतां ने हाजरियां भरियां तिल फुल में भेटावां माया अर्पण कीती। दर आई समूह संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी सबना नू दरों घरों चढ़दियां कला बख्शिश करके नवाजना। अरदासां बेनतियां सबना दियां दर ते प्रवान करनियां। गरीब नवाज रहमतां करो पावन पवित्र हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण दा बल बुद्ध बत प्रदान।

जुगाद जुगाद भक्तन का राखा उस्तत कर कर जीवा। आप जी इस शब्द सरुण कार्य से पावे समा हो चुका है, पर प्रबंधक वीरा वालों हुक्म होया से कि थोड़ा जा होर ऊपर लालना समत से संगत विराजमान होएगी बैठी होएगी। आओ एक शब्द होर पढ़ के उस तो प्रति समर्पण करेंगे जी। समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो। सारे रल के इस पावन शब्द को पढ़िए।